0: आजकल आपके दरवाजे पर मुख्तलिफ चीजें फरोख्त करने के बहाने और मुख्तलिफ कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके चोर आपके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इसलिए होशियार रहें और दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
1: Inspired. Inspire FM.
2: I have

0: आती थीं, मुंह नोचती थीं, बाल काटती थीं और सख्त वावेला मचाती थीं। इब्ने जरीर। जैद बिन असलम रिवायत करते हैं कि आपने बैत लेते वक्त औरतों को इससे मना किया कि वो मरने वालों पर नौहा करते हुए अपने मुंह नोचें और गरीबान फाड़ें और वावेला करें और शेर गागा कर बैन करें। इब्ने जरीर। इसी की हम मानी एक रिवायत इब्ने अबी हातिम और इब्ने जरीर ने एक ऐसी खातून से नकल की है जो बैत करने वालियों में शामिल थीं। कतादा और हसन बसरी रहमहुमुल्लाह कहते हैं कि जो अहद हुजूर ने बैत लेते वक्त औरतों से लिए थे उनमें से एक ये भी था कि वो गैर महरम मर्दों से बात न करेंगी। इब्ने अब्बास की रिवायत में इसकी ये वजाहत है कि गैर मर्दों से तखलिए में बात न करेंगी। कतादा ने मजीद वजाहत ये की है कि हुजूर का ये इरशाद सुनकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, कभी ऐसा होता है कि हम घर पर नहीं होते और हमारे यहाँ कोई साहब मिलने आ जाते हैं। आपने फरमाया, मेरी मुराद ये नहीं है, यानी औरत का किसी आने वाले से इतनी बात कह देना ममनू नहीं है कि साहिब खाना घर में मौजूद नहीं है। ये रिवायात इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम ने नकल की हैं। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा की खाला उमैमा बिन रुकैका से हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस ने यह रिवायत नकल की है कि हुजूर ने उनसे ये अहद लिया कि नौहा न करना और जाहिलियत के से बनाव सिंघार करके अपनी नुमाइश न करना। मुस्नद अहमद इब्न जरीर। हुजूर की एक खाला सलमा बिनत कैस कहती हैं कि मैं अंसार की चंद औरतों के साथ बैत के लिए हाजिर हुई तो आपने कुरान की इस आयत के मुताबिक हमसे अहद लिया, फिर फरमाया, वला तख्शशना अजवाजकुन्ना, यानि अपने शौहरों से धोखेबाजी न करना। जब हम वापस होने लगी तो एक औरत ने मुझसे कहा कि जाकर हुजूर से पूछो शौहरों से धोखेबाजी करने का क्या मतलब है। मैंने जाकर पूछा तो आपने फरमाया, ताखुज मालहु फतहाबी बिही गैरहु, यानि ये कि तू उसका माल ले और दूसरों पर लुटाए। मुस्नद अहमद। उम्मे अतिया फरमाती हैं कि हुजूर ने बैत लेने के बाद हमें हुक्म दिया कि हम ईदैन की जमात में हाजिर हुआ करेंगी, अलबत्ता जुमा हम पर फर्ज नहीं है, और जनाजों के साथ जाने से हमें मना फरमा दिया। इब्ने जरीर। जो लोग हुजूर के इस आईनी इख्तियार को आपकी हैसियत रसालत के बजाय हैसियत अमारत से मुतालिक करार देते हैं और कहते हैं कि आप चूंकि अपने वक्त के हुक्मरान भी थे इसलिए अपनी इस हैसियत में आपने जो अहकाम दिए वो सिर्फ आपके ज़माने तक ही वाजिब उलताअत थे, वो बड़ी जहालत की बात कहते हैं। ऊपर की सतूर में हमने हुजूर के जो अहकाम नकल किए हैं उन पर एक निगाह डाल लीजिए। उनमें औरतों की इस्लाह के लिए जो हिदायात आपने दी हैं वो अगर महज हाकिम वक्त होने की हैसियत से होती तो हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया के मुस्लिम मुआशरे की औरतों में ये इस्लाहात कैसे राइज हो सकती थीं। आखिर दुनिया का वो कौन सा हाकिम है जिसको ये मर्तबा हासिल हो कि एक मर्तबा उसकी ज़बान से एक हुक्म सादिर हो और रूए ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं वहाँ के मुस्लिम मुआशरे में हमेशा के लिए वो इस्लाह राइज हो जाए जिसका हुक्म उसने दिया है।
1: उनसे बैत ले लो।
0: मोतबर और मुतअद्दिद अहादीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों से बैत लेने का तरीक़ा मर्दों की बैत से मुख्तलिफ था। मर्दों से बैत लेने का तरीक़ा ये था कि बैत करने वाले आपके हाथ में हाथ देकर अहद करते थे, लेकिन औरतों से बैत लेते हुए आपने कभी किसी औरत का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया बल्कि मुख्तलिफ दूसरे तरीके इख्तियार फरमाए। इसके बारे में जो रिवायात मनकूल हुई हैं वो हम ज़ैल में दर्ज करते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं कि खुदा की कसम, बैत में हुजूर का हाथ कभी किसी औरत के हाथ से छुआ तक नहीं है। आप औरत से बैत लेते हुए बस ज़बान मुबारक से ये फरमाया करते थे कि मैंने तुझसे बैत ली। बुखारी इब्न जरीर। उमैमा बिन رقیقہ کا بیان ہے کہ میں اور چند عورتیں حضور کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئیں، اور آپ نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے عہد لیا جب ہم نے کہا ہم معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ نے فرمایا فی مستطعتن وتقاتن، یعنی جہاں تک تمہارے بس میں ہو اور تمہارے لیے ممکن ہو۔ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہمارے لیے خود ہم سے بڑھ کر رحیم ہیں۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ سے بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا، بس میں تم سے عہد لوں گا۔ چنانچہ آپ نے عہد لے لیا۔ ایک اور روایت میں ان کا بیان ہے کہ آپ نے ہم میں سے کسی عورت سے بھی مسافہ نہیں کیا۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر، ابن ابی حاتم۔ ابو داؤد نے مراسیل میں شعبی کی روایت نقل کی ہے کہ عورتوں سے بیعت لیتے وقت ایک چادر حضور کی طرف بڑھائی گئی، آپ نے بس اسے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا۔ یہی مضمون ابن ابی حاتم نے شعبی سے، عبد الرزاق نے ابراہیم نخعی سے، اور سعید بن منصور نے قیس بن ابی حازم سے نقل کیا ہے۔ ابن اسحاق نے مغازی میں ابان بن صالح سے روایت نقل کی ہے کہ حضور پانی کے ایک برتن میں ہاتھ ڈال دیتے تھے اور پھر اسی برتن میں عورت بھی اپنا ہاتھ ڈال دیتی تھی۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عید کا خطبہ دینے کے بعد آپ مردوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے وہاں اپنی تقریر میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی، پھر عورتوں سے پوچھا تم اس کا عہد کرتی ہو؟ مجمع میں سے ایک عورت نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ۔ ایک روایت میں جسے ابن حبان، ابن جریر اور بزار وغیرہ نے نقل کیا ہے، ام عطیہ انصاریہ کا یہ بیان ملتا ہے کہ حضور نے گھر کے باہر سے ہاتھ بڑھایا اور ہم نے اندر سے ہاتھ بڑھائے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عورتوں نے آپ سے مسافہ بھی کیا ہو، کیونکہ ام عطیہ نے مسافے کی تصریح نہیں کی ہے۔ غالباً اس موقع پر صورت یہ رہی ہوگی کہ عہد لیتے وقت آپ نے باہر سے ہاتھ بڑھایا ہوگا اور اندر سے عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیے ہوں گے، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے مس ہو۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन. हेलो एंड वेलकम डैलस फोर्ट वर्थ एंड द होल वर्ल्ड लिसनिंग टू रेडियो आजाद वॉइस ऑफ द पीपल. तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम. अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो. सुन रहे हैं जी आप बोल के लब आजाद हैं तेरे

0: उसको मिलते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर काम करता है और ज़्यादा बढ़ता है। एक इंस्ट्रूमेंट बजाते रहेंगे तो एक इंस्ट्रूमेंट ही आप वो ब्रेन वो सेट हो जाएगा, आपको उसके बाद सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की। बाकी इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे, बाकी लोगों के साथ आप डीलिंग करेंगे, चीज़ों को सेटलमेंट ऊपर नीचे करेंगे, तो इसलिए ज़रूरी है ब्रेन के फंक्शंस को और अपने आप को ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट के तौर पे मजबूरी है इंसान की कि वो नया सीखे, नया करे, नया कंफर्ट में आ जाना, कंफर्ट जोन के अंदर वो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप सीखेंगे कुछ नहीं। नॉवल्टी जो होती है, न्यूनेस ऑफ थिंग्स, जब तक वो नहीं आएगी, जब तक आपका ब्रेन को और आपकी बॉडी को चीज़ें चैलेंज नहीं करेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। वो जोन ऑफ नोन के अंदर ही, कंफर्ट के अंदर ही आप गिरफ्तार रहेंगे, और फिर उसके ख़िलाफ़ जब एक वक्त आएगा जब चीज़ें उसके ख़िलाफ़ होने लगेंगी तो आपके हाथ से फिर चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए डिफरेंट किस्म के लोग आपकी ज़िंदगी में होने चाहिए, डिफरेंट किस्म के एनवायरनमेंट में आपको जाना चाहिए, डिफरेंट किस्म के आपके जो रोज़गार के तरीके हैं, मैनी डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग योर इनकम एंड स्टफ, ये सब डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। कोई भी एक चीज़ गिर जाती है, यहाँ किसी एक ही दोस्त के ऊपर बैठे रहते हैं लोग, वो दोस्त जब ज़िंदगी से निकलता है उसको पता नहीं चलता ऑपरेट कैसे करना है, डिप्रेशन आता है, बहुत लंबा टाइम ज़ाया हो जाता है बाउंस बैक करने के लिए। किसी की कोई शादी टूट जाती है, उन्होंने सब कुछ बीवी, जैसे ही शादी टूट गई उन्होंने सब कुछ बीवी के इर्द गिर्द बनाया होता है या शौहर के इर्द गिर्द बनाया होता है, उनके कोई दोस्त नहीं होते, उनका कोई पैशन नहीं होता जिसको वो परसू करें, उनके कोई ऐसी रिलैक्सेशन का और कोई सामान, कोई ऐसे दोस्त ये नहीं होते, वो कट जाते हैं लोगों से, और उसके बाद फिर उन्हें ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता, फिर वो कभी बंदे पे, फिर खुदा पे, फिर नेचर पे, फिर इस किस्म की। कम अक्ल लोग जब अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग ठीक नहीं करते तो फिर वो गिला, शिकवा, बहाना, बस ये बातें करते रहते, क्योंकि खुदा ने आपको मौका दिया है। आपके मुख्तलिफ किस्म के दोस्त क्यों नहीं, एक करीब तरीन 4-6 दोस्त होने चाहिए, उनमें से एक मर सकता है, दूसरा बिगड़ सकता है, तीसरे का दिल दिमाग बदल सकता है, अभी भी 3 हैं। इनके साथ आप प्रेशर को हैंडल करना सीखेंगे, आप जो भी आपका पैशन है या ज़िंदगी का मकसद है वो उससे आप अनहिंज, उससे आप बिल्कुल आपके पाँव नहीं उखड़ जाएंगे। ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली थी कि आप एक शादी कर लें या एक बच्चा पैदा कर लेंगे या एक दोस्ती सिर्फ करेंगे या एक मुद्दे से मोहब्बत करेंगे आप, ये हमने खुद ड्रामा बनाए हुए। रब कहीं किस इसके बारे में ऐसी कोई बातें नहीं, हमारी कैपेसिटी बड़ी कम है, हम बड़ी जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर सारा कुछ उस बंदे पे लाद देते हैं, फिर वो बंदा हमारी एक्सपेक्टेशन के वज़न के अंदर दब जाता है और हमें ना सोचने का कोई तरीका आता है, ना वो हम उससे खुश हैं, ना हम उसकी किसी बात से फिर खुश हैं, और फिर दुखी दुखी से रह के अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह ख़राब कर लेते हैं। ये अहमकों की ज़िंदगी है, ये अहमकों की जन्नत में ऐसा होता है, एक बेस्ट फ्रेंड, एक फलां, एक नौकरी, एक तरीका पैसे का, ये सब चीज़ें, जैसे ही वो चीज़ आपके हिलती है आप पूरे के पूरे हिल जाते हैं, और फिर पूरे की पूरी इंसानियत की कोई मतलब नहीं रहता, खुदा की तरफ दिल नहीं जाता फिर आपका, हालांकि ये सब इनेप्ट लॉस है, अनस्किलफुल हैंडलिंग ऑफ लाइफ की वजह से हुआ ही। इतने बड़े बड़े डिबेकल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े डिबेकल्स होते हैं, आपके करीब तरीन लोग ज़िंदगी के, माँ बाप मर जाते हैं, दोस्त बेहतरीन मर जाते हैं, आपकी ज़िंदगी के करीब तरीन लोग जिनकी वजह से आपने ज़िंदगी एक सर्टन तरीके से बनाई होती है, वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, वो फिर ज़िंदगी लोगों के काबू से निकल जाती है और फिर अजीब दुखी दुखी सी वो ज़िंदगी गुजारते हैं, और उनको और दूसरों को भी वो ये बताते हैं कि ज़िंदगी ऐसे है, बिल्कुल ऐसे नहीं है ज़िंदगी, ये हमने ऐसा किया है, हमारी कैपेसिटी चीज़ों के अंदर इतनी ज़्यादा है लेकिन हम ऑपरेट नहीं करना चाहते, हम डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करना चाहते, हम कंफर्ट के अंदर गिरफ्तार होके चाहते हैं अब ये कंफर्ट आखिरी दिन तक ऐसा ही रहे। इंसान से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परमानेंटली ऐसा रहे, ऐसा नहीं हो सकता परमानेंटली। इंसान उसकी ज़िंदगी में कभी क्या होगा, कभी उसके फाइनेंशियल मसले होंगे, कभी हेल्थ के मसले होंगे, कभी फैमिली के मसले होंगे, आपने अगर किसी के साथ चलना है तो अपने आप को हैंडल करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे दोस्त बने तो अपने फाइनेंसेस, अपने रिश्ते, अपने मामलात सारे जब आप सेटल करेंगे, हैंडल करेंगे, तो क्वालिटी टाइम का आपके पास किसी दोस्त के लिए वक्त होगा, तो वो दोस्ती पनप पाएगी और लंबे अरसे तक आपको दोस्त से वो फीलिंग आती रहेगी। लेकिन ये जो लोग बाकी होते हैं, ये कई लोग आते हैं जी दोस्ती में फलां, ये वो सिर्फ फटीक देते हैं आपको, सिर्फ परेशान करते हैं, सिर्फ दुखड़े सुनाते हैं, सिर्फ उनके एक लाइफ में मसले होते हैं, और फिर आप इसीलिए लोगों से अवॉइड भी करना शुरू कर देते हैं कि कोई नई बात, कोई नई चीज़ हो, और ये कि मसले ना बताएं ऐसा नहीं है, शेयरिंग और बात है, ये कि ज़रूरत के वक्त दोस्त आपके काम ना आए, आप उसे एक्सपेक्ट ना करें, ये भी और बात है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुसलसल ایک ہی بات کرتے رہنا، مسلسل ایک ہی طرح کا رونا روتے رہنا، مسلسل ایک ہی چیز پہ پیچھے پڑے رہنا کسی دوست کے، وہ آپ لوز کر جائیں گے لوگوں کو. یہ جو کچھ نہیں ہے اس وقت میرے پاس یا آپ کے پاس یا کسی کے پاس، وہ ہمیں یا تو لینا نہیں آیا، یا ہم اس کو ڈیزرو ابھی تک نہیں کرتے، یا ہمیں ابھی تک اس بات کی عقل نہیں آئی ہے کہ وہ ہمارے لیے ہے یا نہیں. یہ تین چیزیں زندگی میں جب آپ دیکھ لیں گے تو مسائل مسائل رہتے نہیں. اور یہ ساری باتیں اپلائیڈ ہیں میری لائف میں، اس لیے مجھے یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ کسی وقت کہیں بھی بیٹھ کے بتا سکتا ہوں.
1: جی سر، میں اسی سے ریلیٹڈ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جیسے ابھی میری جاب ہے، آئی ورک ان اے ویری ویری اسٹریسفل اینڈ ہائی اسپیڈ ہائی ڈینجرس انوائرمنٹ، اور جب میں وہاں ہوتا ہوں آئی ڈونٹ فیل ڈینجرس، اور مجھے سیفٹی کی کوئی، بیکاز ایوری تھنگ جسٹ کمز ٹو می، اور میں effortless ease se kaam karta hu. Like I go out with trainees, I show them how to do, and they're like, how and why are you so calm? To main us baat ko jab sochta hu, like jab ye aise koi stressful situation, like jab bandon se dealing ki baat aati hai
0: ji,
1: tab main hota hu.
0: Bhai jaan, ye aapko baat ko gaur se samjhe. Your job is not important, your life is. Job aaj ye hai, kal koi aur ho sakti hai. مسئلہ ہمارا یہ ہے، میں آج ہی کسی کو بات بتا بھی رہا تھا، سمجھا بھی رہا تھا کہ ہم لوگ، انہوں نے مجھے بات کر رہے تھے کہ امیزون نے چیزوں کو اتنا یوزر فرینڈلی بنا لیا کہ آپ ان کے ایپ پہ جائیں، آپ صرف نام لیتے ہیں کسی چیز کا تو وہ چیز اویلیبل کر دی جائے گی. تو میں ان کو بات سمجھا رہا تھا، میں کب سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کو زندگی میں چاہیے، جو بھی آپ کو چاہیے، اس کو یوزر فرینڈلی بنائیں. آپ کو انسان چاہیے اپنی زندگی میں، تو آپ اینڈ یوزر آپ کے پاس آئے گا، جو انسان ہے وہ آپ کو چاہیے. تو آپ اپنی زندگی کو، اپنی زبان کو، اپنی ڈیلنگ کو یوزر فرینڈلی ہوں گے تو چیز آپ کے پاس آئے گی. آپ کو بزنس چاہیے تو آپ کتنے یوزر فرینڈلی ہیں. آپ کو ہر چیز کو جتنا آسان کریں گے لوگوں کے لیے، کیوں رب نے، اور سائنس چیک کریں، رب نے اپنے الفاظ میں کہا تم میں سے بہترین انسان وہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس سے کیا ہوگا، لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے. آسانی پیدا کریں گے، زبان کو آسان کریں گے کہ ان کو سمجھ آئے، خواہش کو آسان کریں گے، ضرورت کو آسان کریں گے، موشن کو آسان کریں گے، تو لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کنوینئنٹ ہوں گے کہ آپ سے لوگ آ کے بات کر سکیں، مسائل بیان کر سکیں، پریشانی بتا سکیں، تو آپ حل بھی کر پائیں گے اور ایموشنز بھی ہوگا، لوگ آپ سے کنیکٹ بھی کر کے رہیں گے. اور رب کیوں چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ اس کی آسانی، اس آسانی پیدا کرنے والا بندہ، اس نے اپنی کتاب میں آسان ترین زبان سے اتنی مشکل چیزیں آپ کو بتائیں تاکہ لوگ کنیکٹ کر سکیں، اس کی طرف آ سکیں. تو اس کے بندے بھی جو ہیں، جتنا چیزوں کو آسان کریں گے بندے ان کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، کیونکہ بندہ بندے کے ساتھ، آپ کی زبان میں بندہ بندے تو دارو ہے، ہم نے جو کر دیا وہ بندہ بندے تو مارو کر دیا نا ہم نے، کیونکہ حرکتیں ہم ایسی کرتے ہیں. تو جتنا آپ خود کو آسان کریں گے، اب یہ جتنا دیکھو بزنس میں، اب آپ ایک کام کرتے ہو، کرتے کرتے آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے تو یو آر ڈوئنگ یور جاب ود این ایفرٹ لیس ایز، اٹس کمنگ نیچرلی ٹو یو، ایون پیپل آر آسکنگ ہاؤ آر یو ایبل ٹو ڈو اٹ. اتنی چیزیں جھگل کر کے آپ بڑے کام رہ کے ساری چیزیں ڈیل کر لیتے ہو، تو ایک کمال قسم کی ایک آپ کا جو ہے نا وہ ایک آپ کے بارے میں ایک فیلنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. آپ خود سوچو لائف میں آپ یہ نہیں کر پا رہے. تو مجھے زندگی میں یہ باتیں سمجھ آئیں، اچھے سیلز مین کا مقصد اچھا انسان بننا ہے، اور کوئی بھی چیز کو اچھے طریقے سے آپ بیچ سکیں، پروڈکٹ کو، آپ سروس کو، اپنی بات کو. اسی طرح لائر ہیں تو آپ نے جو بھی لاجک اور ریزن یوز کرتے ہیں لا کو، وہ آپ اپنی زندگی میں استعمال کریں. اسی طرح آپ ڈاکٹر ہیں تو کتنے ہی ڈاکٹروں کی صحتیں برباد ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں تو سارا علم جو ہے میڈیسن کا اور ہیومن اناٹمی کا، وہ بایولوجی کا، وہ سارے کا سارا یوز کریں اور خود کو ٹھیک کر کے دکھائیں سامنے، یا دوسروں پہ اپلائی کر کے دکھائیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا ہمیں کنڈیشن کر دیا گیا کہ یہ نوکری کے لیے، یہ ایکچولی نوکری کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ہے. نوکری اس میں 9 to 5 کا ایک کام ہے صرف، باقی گھنٹے جو ہیں 16 اس میں کیا کریں گے ہم. تو یہ سمجھنا ہے، جو چیز بھی آپ کو اچھی کمیونیکیشن ہے آپ کی اپنے جاب کے بارے میں بتا سکتے ہو، یا اچھی کمیونیکیشن ہے آپ اپنے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، یا پیپل دوز ہو ورک ود یو ان کے ساتھ آپ کا اچھا ریلیشن شپ ہے، تو گھر میں وہ ریلیشن شپ نظر آنا چاہیے، ورنہ میرے کسی کام کے نہیں ہو آپ. اسی طرح آپ جو کام آرگنائزیشن میں کسی میں کام کرتے ہو، آپ کے اندر وہ ایبلٹی نظر آنی چاہیے جو آپ کی پروفیشن نے آپ کو دی ہے. آپ فوجی ہو، آپ کا ڈسپلن نظر آنا چاہیے، آپ کی پنکچوئلٹی نظر آنی چاہیے، آپ جو ورڈ بولیں اس کو آپ کو کر کے دینا ہے، इसको कहते हैं कि आपने किसी से कुछ सीखा, वरना जिन्होंने मेरे साथ, जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी की सीखी और इन तमाम चीज़ों में वो मुझसे बेहतर थे, हेल्थ में वो हमसे बेहतर थे, आज उनकी हेल्थ बर्बाद है, फाइनेंसेस में वो हमसे बेहतर थे, आज उनके फाइनेंसेस उनके काबू में नहीं, जल्दी रिश्ते करने में, लोगों को बनाने में और लोगों के आगे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने में और बड़े बड़े काम करने में वो हमसे आगे थे, आज कोई उनका ना नाम लेता है, ना उनसे कोई रिश्ता रखता है, ना सीखता है, हर वक्त रोते पीटते परेशानी रहते हैं और दुखी रहते हैं कि जो कुछ मैंने किया उसका मुझे कुछ हासिल नहीं मिला। ये सब जो है नफसा नफसी है, वही सारी बातें सेडिस जो लोग करते हैं वो सब कर रहे हैं। तो सीखा क्या आपने? ये सीखा कि आपकी ज़िंदगी आपके बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे आपकी जॉब है, इसी तरह एफर्टलेस ईज से आप अपना काम कर सकें, आप एफर्टलेस ईज से अपने फाइनेंसेस हैंडल करें, एफर्टलेस ईज से अपने इमोशंस हैंडल करें, एफर्टलेस ईज से अपने रिलेशनशिप्स हैंडल करें। यही सारे काम आप बिजनेस में करते हो कि नहीं, जॉब पे? वो घर पे क्यों नहीं करते? यही चीज़ें हमें समझनी है कि वो सब का सब जो आपकी ज़ात में वहाँ है, यहाँ आएगा तो इसका मतलब है आपने उससे कुछ सीखा और असल फ़ायदा आपका अभी हुआ। जॉब में तनख्वाह के लिए आप काम नहीं करते। डिग्री जो होती है ना, किसी बड़े सयाने बंदे ने कहा था, जब आपको डिग्री मिलती है या वो क्वालिफिकेशन होती है तो उसका मतलब ये नहीं होता। अक्सर वो डिग्रीज हम जो लेते हैं जब जॉब करने जाते हैं, वो पूरी की पूरी डिग्री उस जॉब में काम ही कहीं नहीं आती। पर डिग्री का मतलब ये है कि 16 साल या 14 साल तक आप मुसलसल स्कूल गए, आपने इम्तिहान का प्रेशर बर्दाश्त किया, आपने वहाँ पीयर प्रेशर बर्दाश्त किया, आपने वहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें, मसाइल, तकलीफ़ें, परेशानियाँ हुई होंगी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, सब बर्दाश्त की, यू सेल्ड थ्रू, और उसमें से आप एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर ये लिखा हुआ है कि आपकी ये डिग्री है आपकी, आपने इसमें से बच के निकले, इसमें से कुछ आपको मार पड़ी, कुछ आपने हासिल किया, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहे, इस बात पर आपको नौकरी देते हैं। ये है क्वालिटी। डिग्री इसलिए ली थी, इसलिए नहीं ली थी कि इससे मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, उससे मैं पैसे कमाऊंगा। और मैं अपने अपने बच्चे को उस दिन बता रहा था कि ये डॉक्टर बनने के लिए तुझे डॉक्टरी में नहीं डाला हुआ, डॉक्टर तो मेरे इर्द गिर्द, अगर मुझ पे चले, मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसको मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा वैसा बने, कोई इस काबिल नहीं, बिकॉज लाइफ में हम सारे फेल हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे कुछ भी हूँ, मैं कभी उसकी डॉक्टरी की तरफ ना उनको लेके जाता। लेकिन डॉक्टर बनने से आपको, उनको मैं बता रहा था बॉडी है क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मेडिसिन कैसे काम करती है, देनी भी है या नहीं देनी, ये कैसे काम करती है, और उसके बाद आप अपना काम घर से भी शुरू कर सकते हैं फीस लेके या उनको आपको इर्द गिर्द के इलाके से, ताकि आपको एक हुनर आ जाएगा जिसमें आप अपने पे अप्लाई करेंगे, अपनी फैमिली पे अप्लाई करेंगे, अपने सीनियर्स पे अप्लाई करेंगे, अपने इर्द गिर्द के गरीब मस्किन जो लोग हैं उस पे अप्लाई करेंगे, मुझे ये बंदा बनाना है आपको, और उसके ये जब बन जाएगा, पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो आ जाएगा, और उस वक्त तक आप इतना चीज़ों को बिल्डअप कर लेंगे कि खुद, लेकिन आपको और फर्स्ट आने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी जान को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ है क्या, ये काम कैसे करती है। 10वें नंबर पर भी गुड, 20वें पर भी आप परफेक्टली फाइन है, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड द होल मैकेनिक्स, मेडिकल कॉलेज है क्या, वरना और बेसिक अगर जो तुम बोल रहे हो वो कर नहीं रहे, जो काम तुमने कमिटमेंट कर रहे हो उसको तुम पूरी नहीं कर पा रहे, काम हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे का मतलब है तुम वही प्रोडक्ट बन रहे हो जो गांव में या शहर में लोग हैं, और इतने जानवर हैं, मैं एक और जानवर को रिफाइंड बनाने के लिए क्यों पैसे ज़ाया करूँगा, या अपना टाइम और इमोशन में क्यों ज़ाया करूँगा, वो तो सेल थ्रू करते हैं, तुम कुछ भी पढ़ोगे सेल थ्रू करके निकल जाओगे। तो इंसान कैसे बनोगे, मुझको बेसिक इसके ऊपर ध्यान है मेरा, ना मुझे रिजल्ट चाहिए फर्स्ट आने के, ना मुझे ये चाहिए कि जी आपने पैसे क्या बनाएंगे, क्योंकि मुझे वो कमिटमेंट चाहिए, आप जो बोलें वो नज़र आना चाहिए, मुझको इंडिविजुअल क्रिएट करना है, और अगर आप वो नहीं बन सकते तो मेरा टाइम, एफर्ट, पैसा, सब ये सब ज़ाया हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, उसकी जगह आप रेगुलर कोई भी काम करो, आई डोंट केयर, तो तुम सेटल भी हो जाओगे, काम भी कर लोगे, बस दुनिया तुम्हें चलाकी भी सिखा देगी, तेज़ी भी सिखा देगी, और आखिर में तुम रोते हुए, पीटते हुए, परेशान होते हुए एक और बंदा इजाफा हो जाएगा, और मेरा सारा टाइम और एफर्ट और एनर्जी ज़ाया हो जाएगी एक इंसान को जिसको मैं इतना कुछ दे रहा हूँ। तो जब तक हम अपनी औलादों को ये बातें नहीं बताएंगे, अपने रिश्तों में ये बातें नहीं बताएंगे, और दूसरी बात, और जब तक ये लोग अपने पे काम नहीं करेंगे, ये हमेशा डरे रहेंगे। अगर कोई बंदा अपनी हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम नहीं करता, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम नहीं करता, कुछ दिनों के बाद दूसरा बंदा जो ये सब कर रहा है उसके लिए आप रिडंडेंट हो जाएंगे, वो बंदा आपसे आगे निकल जाएगा और आपकी इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्सेस, घबराहट बढ़ती रहेगी हमेशा। आप फिजिकली उनसे पीछे रह जाएंगे तो आपको लगेगा मैं फिजिकली इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा। आप मेंटली पीछे रह जाएंगे तो आपको लगेगा मैं डम हूँ या मेरी बात की कोई तुक्की नहीं बन रही और या मुझे मेरे साथ वो टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते। ये बेहतरीन मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ, दोस्ती में हो, शादी में हो, पार्टनरशिप में हो, किसी चीज़ में भी हो, अगर आप साथ नहीं चले वो उस इंसान के जो आपको वो मोटिवेट नहीं कर रहे, इंस्पायर नहीं कर रहे, या वो दूसरा बंदा आपको मोटिवेट या इंस्पायर नहीं कर रहा। मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है, मेरा कोई ऐसा फैमिली मेम्बर नहीं है जिसके साथ मेरा ताल्लुक है और वो मुझे इंस्पायर नहीं करता किसी ना किसी फील्ड में। और मैं भी, मुझे लोग कहते हैं कि आप इसमें इंस्पायर कर रहे हो, जब वो बोलते हैं तो जब वो उससे ऊपर नीचे करते हैं, फिर मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ कि अगर इंस्पायर कर रहा होता तो आप ये नहीं ये कर रहे होते, इस पे ध्यान दो, कार्रवाई पे ध्यान नहीं। तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कहें जी आप बड़े इंस्पायरिंग हैं, आप बड़े लविंग हैं, आप बड़े केयरिंग हैं, हमने आपने हमारे लिए ये किया, आप बड़े नाइस हैं, उसमें बदले में दे क्या रहे हो? एटीट्यूड कम करो, बेवकूफ़ी कम करो, स्टुपिडिटी कम करो, इनसिक्योरिटीज़ कम करो, अपने काम पर ध्यान दो, जो कमिटमेंट किए वो पूरी करो, अपने आप को स्ट्रांग करो, कोई पैशन है परसू करो, क्रिएट करके कोई चीज़ दिखाओ, खुश होकर दिखाओ, ग्रेटफुल होकर दिखाओ, और ज़्यादा ग्रेटफुल होकर दिखाओ। ये काम है आपके, इससे लोग आपके साथ, आपको कुछ नहीं करना। और इन सारे कामों में, ये रब से सीखा है मैंने, इन सारे कामों में क्या होगा, आप अपने इंडिविजुअल बनते जाएंगे, आपकी हाई सेल्फ इस्टीम होगी, आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली बेहतर इंसान बनेंगे, आपका फ़ायदा होगा। मैं रहूं या ना रहूं आपके साथ या आपकी ज़िंदगी में, आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो रब भी यही चाहता है हमसे, क्योंकि वो गिविंग है, उसकी वापसी का उसको टेंशन नहीं है, वो खुद मिल जाएगा। आपके लिए वो चाहता है कि आपका सिस्टम एक बन जाए, आप अपने लिए किसी काबिल बनो, जब बन जाओगे तो फिर फैसला करना मेरे साथ रहना या मुझे छोड़ के जाना है। ये असल चीज़ है इंसान बनाने वाली। और जिस इंसान का इतना ज़र्फ नहीं होता, इतना कैरेक्टर नहीं होता, और यहाँ इंसान बार बार इंसान होने के नाते वो इतना नीच हो जाता है, मुझे छोड़ के ना जाओ, मुझे ये किया मैंने तुम्हारे लिए, वो किया मैंने, वो किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने अपने लिए कर रहा था, साथ आपके लिए भी कर रहा था, मैंने अच्छा खाना बनाया, आप मेरे साथ उठते बैठते चलते हो, आप भी वो खाएं, मैंने एक चीज़ क्रिएट की, आप उसमें मेरी हेल्प करते हो, वो आपके लिए भी, आप उसको इन्जॉय करें। सो आपने और मिल के आपने मेरे साथ क्रिएट किए, तो खुद इन्जॉय करो, कंपनी है, दोस्ती है, रिश्ते हैं, इन्जॉय करो, डरो मत, घबराओ मत, हर वक्त परेशानी में ना रहो। तो ये जब तक इस तरह सोचेंगे नहीं हम, तब तक हमारी ज़िंदगी में कभी मिरेकल्स नहीं हो सकते, और ना कभी लोग सोच सकते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं। आप ऐसे इसलिए कि आपने सोच का तरीका बदला, आपने ध्यान गिविंग पे रखा, आप लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, डर ख़त्म हुआ, आपको ये बात समझ आएगी कि ये सब कहीं और से आ रहा है, और जिसने अभी तक इतना दिया वो मुझे और भी देगा, मुझे सिर्फ उसको डिज़र्व करते रहना है, मुझे अपने पे काम करते रहना है, मुझे अपने दिल को, दिमाग को साफ रखना है, ताकि इसमें साफ चीज़ की जगह बन सके, साफ एहसास की जगह बन सके, क्लीन लोग, क्लीन सोचें, क्लीन काम की जगह बन सके, खुद ब खुद आते रहेंगे और एक से बढ़कर एक आएगा। इसलिए टेंशन ख़त्म होगी, डर ख़त्म होगी, ये छोड़ देगा, इसको ये नहीं देंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा सोच रहा है, उसको ये नहीं देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको टाइम नहीं दिया तो ये कर देगा, इसको अगर अच्छा फील नहीं कराया तो वैसा कर देगा। ये सब आपके अपने मसाइल हैं, आप खुद करेंगे, हम आपको इन्वायरमेंट देंगे साथ साथ, हम भी उसमें पनप रहे होंगे, साथ साथ इवॉल्व करेंगे, ग्रो करेंगे, आप भी करेंगे, और चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगे। हम आपके साथ नहीं भी रहे तब भी आप 1,25,000 के मिलियन डॉलर मैन हैं आप या वुमन है। ये है सोचने का तरीका, अगर हम इस डगर पे सोचने लग गए तो वैसे ही इतना कुछ मिल जाएगा कि ना तो शुक्र ख़त्म हो रहे होंगे और ना ही मरने से पहले आपकी इन्जॉयमेंट ख़त्म हो रही है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ का, इन्जॉयमेंट। इन्जॉयमेंट एंड फ्री विल टू चूज़, ये दो चीज़ें अगर कोई बंदा कर गया, जो लोग इबादत करते हैं, इंट्रेंस यू नो कंपनीज़ बनाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, रातों को जागते हैं, इतना कुछ करते हैं, इनको क्या, इनको कुछ मिल रहा है, वो मिल साथ साथ रहा है और हमेशा मिल रहा होता है। ठीक है हीरा सिंह जी?
1: जी सर, अभी आपकी बातों से सर, आपकी इतने ध्यान से सुन रहा था, इतनी दिल को लग रही थी, मुझे एक बात अभी समझ आई, आप जो भी कर रहे हो वो आप हमेशा कहते हुए बात, जितनी ऑथेंटिसिटी और पैशन से करते हैं वो बहुत जरूरी है हर काम के लिए। और मैंने ये नोटिस किया, मेरे जैसे हम काम की बात कर रहे थे, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू फ्लरिश इन दैट। पर जब अपने आप के अपने ऊपर बात आती है तो मेरा मेन इमोशन जो है वो डर है, मैं अभी मुझे समझ आया और उसके उसके ऊपर मुझे काम करना है।
0: एक्चुअल में ना जब आपका नहीं सिर्फ हम सब का, क्योंकि सर्वाइवल इंसान के लिए ना उसकी सृष्टि में शामिल कर दिया गया कि उसको हर वक्त अपने सर्वाइवल, मेरा क्या होगा, ठीक है, उस सर्वाइवल से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है, जब आप इस बात को दिमाग में ड्रिल कर लेंगे ना। आप यकीन करें, मैं बचपन में जितना बीमार था मुझे नहीं लगता था और मेरे इर्द गिर्द भी लोगों को नहीं लगता था कि मैं इतना लंबा सर्वाइव करूंगा। फिर मैं जब जिस दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग में गया, मुझे उसमें भी नहीं लगता था कि मैं इसमें सर्वाइव कर पाऊंगा, एजमा के साथ, वीक यू नो जिस्म के साथ, बोन्स के साथ, जो भी जॉइंट्स के साथ, मुझे उसमें भी ये लगता था मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। कुछ एक दो काम मैंने ऐसे किए, मुझे लगता था मैं ये फिजिकली नहीं या इमोशनली नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। कुछ एक दो ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में, मुझे लगता था मैं स्पिरिचुअली इसको नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा, लेकिन मैंने सर्वाइव किया। इसका मतलब ये था सारे मेरे दिमाग के डाउट्स थे, आई वॉज मेंटली फिजिकली एंड स्पिरिचुअली मोर स्ट्रॉन्गर देन वट आई थॉट ऑफ माई सेल्फ। तो आई डिड नॉट नो दीज थिंग्स, बट मुझे समझ गया। और मैं 3 दफ़ा नियर डेथ एक्सपीरियंस से बचा जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद मरा नहीं मैं अभी तक। इसका मतलब है कि मरने का टाइम जब बोला गया है तो उससे पहले नहीं आएगा। और सर्वाइवल के लिए मुझको, मैंने ये बात सीखी कि पत्थर के अंदर कीड़े को भी सर्वाइव करने की टेंशन नहीं है, उसको भी पानी और खुराक जो मिलनी है उसको मिल जाती है। कीड़ों को, परिंदों को, जानवरों को, शेरों से लेकर लूंबड़ी, हर एक की खुराक उसको मिल रही है, वो सब सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइवल से बाहर निकलना है, डर से बाहर निकलेंगे तो असल इंसान का पोटेंशियल उसको नज़र आना शुरू हो जाता है। देखें, जब आप टेंशन में होते हैं आपको कुछ नज़र ही नहीं, हर चीज़ आपको ब्लॉक नज़र आ रहा होता है। जब एकदम आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सामने पड़ी हुई चीज़ें आपको नज़र नहीं आती, चीज़ें छुप जाती हैं आपकी आंखों से, बिकॉज वो उस पर आपको डर का पर्दा आपकी आंखों के आगे पड़ जाता है। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: देख रही है। मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मैं रोज़गुल बज़्म-ए-नात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। हर जुमातुल मुबारक आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद या नात दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। तो सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1
1: Every Friday at 11 AM.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:30.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

ये तो उसको उससे शदीद मोहब्बत है, और वो अजीब किस्म की मोहब्बत है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके पेट में, उसकी तकलीफ़ में इजाफा हो रहा है, उसको उल्टी आ रही हैं, उसको कमर में दर्द हो रहा है, उसको खाना हजम नहीं हो रहा, उसको सांस नहीं आ रही, उसको नींद नहीं आ रही, ना नींद में चैन, ना बैठे होने में चैन, ना लेटे होने में चैन, ना खड़े होने में चैन। और उसकी तकलीफ़ की एक ही वजह है, माँ की सारी तकलीफ की एक ही वजह है, वो क्या है? बच्चा। और जैसे जैसे वो बच्चा तकलीफ में इजाफा करता है, उल्टा माँ उससे कम मोहब्बत के बजाय क्या ज्यादा मोहब्बत करती है। फिर आखिरी लम्हा आता है, बच्चा तकरीबन माँ को मार डालता है, तकरीबन मर, कितना खून उस माँ ने बहाया है, और जिंदगी में उसका इतना खून नहीं निकला होगा जितना इस बच्चे की वजह से निकला है। और निकलने के साथ ही बदला देने के बजाय कि तूने किया ये मेरे साथ, सारी दुनिया को वो भूल जाती है, उसकी सारी मोहब्बत बच्चे की तरफ। और जब वो बच्चा उसके पेट में होता है तो उस बच्चे का मुकम्मल तौर पे ख्याल किया जा रहा होता है, किराया पे हुआ हुआ है, खाने का इंतजाम है, सफाई का इंतजाम है, सारा इंतजाम किसने किया हुआ है, सब पूरी तरह से ख्याल रखा हुआ है। रहम से दो मायने निकलते हैं, शदीद मोहब्बत और मुकम्मल ख्याल, मुकम्मल तौर पर ख्याल करना। अच्छा, अब रहमत का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं हम, भाई रहम करो, उस्ताद आपको फेल, टीचर आपको फेल करने वाला है मैट्रिक के इम्तिहान में, सर जी रहम करें। सर जी रहम का क्या मतलब होता है? सजा ना दें। हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? सजा ना दें, सर रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक और मौका दे दें। क्या मतलब है सजा ना दें? पुलिस वाले रोक दिया, भाई रहम करें प्लीज़ यार, देर हो रही है जॉब को, आइंदा नहीं करूँगा। रहम हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? सजा ना दो। अरबी में रहम कैसे इस्तेमाल हो रहा है? दो चीज़ों के लिए। क्या बताया था मैंने? शदीद मोहब्बत। मैं ये बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अरबी जबान के अल्फाज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उनको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो उसके नए मायने निकल आते हैं, लेकिन हमें बहुत ही गलत किस्म का एक एतमाद आता है, नहीं कुरान के बहुत सारे अल्फाज मुझे समझ में आते हैं, कुरान में है, और रहमान रहीम रहम करने वाला, रहम की उर्दू जिसकी उर्दू जबान है उसको कैसे समझ नहीं आएगा? जी ये रहम का लफ्ज़ तो है लेकिन ये उर्दू नहीं है, ये अरबी वाला रहम है, ये उर्दू वाला रहम नहीं है। और इनमें फ़र्क है कि नहीं? वो बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मैं अल्लाह को रहम करने वाला समझूं, मैं समझूं बस वो जो अजाब देने वाला था लेकिन देते देते रुक गया तो उसने रहम कर दिया, लेकिन माँ के रहम से अजाब का तो कोई ताल्लुक है ही नहीं, बल्कि इसका बुरा तर्जुमा इंग्लिश में भी बहुत आम है, मर्सी। मर्सी भी इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, दी मिलिटरी शोड नो मर्सी, द जज शोड नो मर्सी, यानी फौज ने कोई रहम नहीं किया, बेरहमी से मारा, जज ने बेरहमी से फैसला किया, यानी उसने कोई लिहाज नहीं किया। लेकिन इसके मायने मनफी होने के बजाय असल में मुस्बत हैं, इसका ताल्लुक मोहब्बत और मुकम्मल ख्याल से है, पहली बात। अच्छा, अब कितने लफ्ज इस्तेमाल हुए रहमत वाले इस सूरत में? दो, अर-रहमान और अर-रहीम। अब इन दोनों का आप हमें समझना पड़ेगा, दो लफ्ज क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं? अगर बात एक ही है तो दो दफा क्यों? तो इन दोनों को अलग अलग समझते हैं। पहली बात करेंगे अर-रहमान के बारे में। रहमान जैसे लफ्ज अरबी में और भी हैं, आतशान, गतबान, जवान, इसको कहते हैं फ़ालान, लफ्ज़ जो एक ही तरह के होते हैं ना, उनका एक वज़न होता है, इसको वज़न कहते हैं अरबी में, गतबान, अतशान, जवान, रहमान। इन अल्फाज में तीन खसूसियात होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, रहमान जैसे अल्फाज में तीन खसूसियात होती हैं। पहली खसूसियत होती है इसमें शिद्दत होती है, तो रहमान
بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا.

0: और रहम अरबी वाला रहम, बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करने वाला, बहुत ही ज्यादा ख्याल करने वाला, शदीद ख्याल करने वाला, शदीद मोहब्बत करने वाला, पहला मायना। दूसरा मायना इसका यह होता है कि यह फौरी होती है, अभी अभी, यानी यही नहीं कि वो बहुत शदीद मोहब्बत कर रहा है, बहुत शदीद ख्याल कर रहा है, अभी अभी कर रहा है, ये नहीं कि करेगा, फिक्र ना करो अगले साल करेगा, फिक्र ना करो बहुत जल्द करेगा, नहीं अभी अभी कर रहा है, अलन फौर, अलहदूस इसको बनागा भी कहते हैं, अलहदूस। लेकिन तीसरा मायना जरा पहले आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, तीसरा मायना है कि ये किसी वजह से आर्जी होता है, टेम्पररी होता है। जैसे अतशान कहते हैं बहुत ही शदीद प्यासा, अतशान, क्या किसी वजह से ये शदीद प्यास खत्म हो सकती है? पानी से, यानी वो परमानेंट नहीं है, दायमी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। जवान शदीद भूखा, क्या किसी वजह से जुआ भूख खत्म हो सकती है? खाने से। गतबान शदीद गुस्से वाला, हो सकता है सजा देने से या बदला लेने से या समझाने से गुस्सा उतर रहा है। अब कह रहे रहमान शदीद मोहब्बत करने वाला, अभी अभी करने वाला, लेकिन इसमें थोड़ी सी डराने वाली बात भी है, शायद इंसान कोई ऐसी हरकत कर बैठे जिस वजह से वो इस रहमत का मुस्तहिक ना रहे। जैसे पानी प्यास को हटा देती है, खाना भूख को हटा देता है, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो रहमान से रहमत को हटा सकती है। मैं रहमान तो वो रहेगा, मेरे लिए नहीं होगा, ये मुमकिन है। तो इसमें एक तरह से एक टेम्पररी थ्रेट आ गई, एक तरह से एक खतरा है, अंदेशा है इस लफ्ज़ के अंदर भी, एक बड़ी अजीम नेमत भी है और साथ में अंदेशा भी है। अच्छा, ये तीन बातें थी रहमान के बारे में, क्या तीन बातें थी मुझे दोबारा याद कराइए, शिद्दत, फौरी, आर्जी। ओके, रहीम के बारे में दो बातें याद रखनी है, रहमान के बारे में तीन, रहीम के बारे में दो। ओके, वो क्या है? पहली बात कि ये हमेशा रहने वाली सिफत होती है, कोई हमेशा रहने वाली खसूसियत। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं, आप कहें ये बहुत बहुत इल्म वाला शख्स है, बहुत इल्म वाला शख्स है, वो जब सो रहा है ना वो फिर भी इल्म वाला है, जब वो जागा हुआ है वो फिर भी इल्म वाला है, जब वो खाना खा रहा है वो फिर भी इल्म वाला है, और जब वो अपनी इल्म की बुनियाद पर कुछ सिखा रहा है फिर भी वो इल्म वाला, यानी वो सिफत उसके अंदर है, चाहे उसका मुजाहरा हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो सिफत है उसके अंदर है, वो हमेशा है। मैं कहूँ ये लड़का लंबा है, वो खुश हो या ना हो, वो गर्म हो या सर्द हो, वो या अंदर हो या बाहर हो, लंबा तो वो लंबा ही रहेगा ना, वो हमेशा के लिए लंबा है, ये परमानेंट उसकी एक क्वालिटी है, उसकी एक खसूसियत है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ फ़ईल, जैसे रहीम, शरीफ, करीम, अज़ीज़, सब में यही होता है, पहली चीज़ होती है कि ये हमेशा के लिए होने वाली चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है काबिलियत या अहलियत, इसको भी समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें आप कहें अपने, आप जैसे लेडीज़ को कहें मेरे शौहर जो हैं वो बहुत सब्र वाले आदमी हैं, बहुत साबिर इंसान है, अभी आप पता नहीं, हो सकता है वो भी घर पे हैं, हो सकता है किसी से उनकी बात हो रही है और इस वक्त वो बिल्कुल सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे, मुमकिन है कि नहीं, या हो सकता है अभी वो सो रहे हैं, अगर वो सो रहे हैं तो वो सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, नहीं उस अभी तो वो सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर उसकी काबिलियत है कि नहीं, उसका पोटेंशियल उनके अंदर है कि नहीं। यानी फ़ईल, करीम, अज़ीज़, रहीम, इस तरह के अल्फाज होते हैं कि सलाहियत तो है, लेकिन इसका मायना ये नहीं कि उस सलाहियत का फौरी तौर पर मुजाहरा भी हो रहा है। वो इस तरह समझने कि वो अंदर है लेकिन ये नहीं मालूम कि बाहर आ रही है कि नहीं। जिस तरह समझ लें कि गाड़ी है उसका बहुत बहुत ही ताकतवर इंजन है लेकिन जब वो इंजन इस्तेमाल ना भी हो रहा हो सलाहियत तो फिर भी है ना उसके अंदर, ये है रहीम। तो तीन मायने निकले रहमान के और दो मायने निकले रहीम के। अब ये समझ लें अगर सिर्फ अर रहमान कहा होता तो क्या मसला हो जाता, आर्जी होती, बात हमेशा के लिए ना होती। अच्छा अगर सिर्फ अर रहीम कहा होता एक तो शिद्दत ना होती और एक फौरी तौर पर ना होती और एक इम्कान तो होता कि सलाहियत तो है रहम की लेकिन उसका मुजाहरा हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो रहमान के अंदर है ना। दोनों की जरूरत थी। अब शिद्दत भी आ गई, फौरी तौर पे भी हो गई और हमेशा के लिए भी हो गई। अर रहमान अर रहीम। एक और तरह से समझ लें, फर्ज करें कि आपको बड़ी जबरदस्त भूख लगी है, आप घर पे पहुंचे, खाना तैयार है, वाइफ ने आपके लिए बहुत शाप का फेवरेट खाना बनाया हुआ है, स्मेल भी आपको आ रही है, खुशबू आ रही है लेकिन प्लेट खाली है टेबल के सामने, भूख आप भूखे मर रहे हैं और वो आराम से आके आपके सामने बैठती हैं आपकी वाइफ और कहती हैं अगले हफ्ते क्या खाएंगे। अगर वो ऐसा जालमाना सवाल पूछती हैं उस वक्त आपके जहन में अगला मिनट समझ नहीं आ रहा, अगले हफ्ते की क्या बात कर रही हो बेगम, अभी मुझे बस खाना खाना है। जब इंसान को भूख लगी होती है ना तो उसको कब की फिक्र होती है, बात की कि अभी की, अभी की फिक्र। आपकी जॉब है, यहां पर मंथली पेचक होता है या बाई वीकली होता है, क्या होता है, चलो पहली को पे मिलनी है या तीस तारीख को पे मिलनी है, ठीक है। फर्ज करें आपका बॉस जो है उसने आपको चेक देना है, 5 बजे आपको ऑफिस से जाना है, 4:50 हो गए हैं, वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है, फोन उठा नहीं रहा और आपको जाना है, आपको चेक डिपॉजिट करना है, किराया देना है, ये करना है और आपको लोग तसल्ली दे रहे हैं, नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, बॉस साहब बहुत रिलायबल हैं, हमेशा टाइम पर आते हैं, आप फिक्र ही ना करें, आप बेफिक्र हो जाए, वो हमेशा ऐसे होते हैं, वो कभी भी लेट नहीं होते, आपको तसल्ली हो जाएगी। हाँ ठीक है हमेशा तो होते हैं, काश के अभी भी हो रहे होते। जब मुसीबत होती है ना, जब मुसीबत होती है तो आपको हमेशा वाली चीज़ की से तसल्ली नहीं होती, आपको फौरी तौर पर तसल्ली चाहिए होती है। अल्लाह ताला ने अर्रहमान का जिक्र पहले किया, क्यों, क्योंकि अर्रहमान में रहमत कब आती है, फौरी तौर पे, अभी आ रही है। अच्छा वो मिसाल दी थी आपको खाने वाली, भूखे बैठे थे, अब आपने खा लीजिए बिरयानी, पेट भर गया, फिर आप कहोगे हाँ बेगम वो अगले हफ्ते के बारे में क्या बात कर रही थी आप, अब कैसे दिमाग खुल गया, क्योंकि इंसान की नेचर में क्या है, जब अभी वाला मसला हल हो जाए तो दिमाग कहाँ जाता है, आगे के बारे में, यही होता है ना, अभी का मसला हल, अभी अगर अभी का मसला है तो आगे कुछ समझ नहीं आती, अगर अभी का मसला हल हो गया एक दफ़ा इधर की तसल्ली हो गई तो फिर आगे की। इसीलिए जो लोग फाइनेंशियली मुश्किल में होते हैं वो आगे की नहीं सोच सकते और जो लोग फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं वो थेरेपिस्ट के पास बहुत जाते हैं क्योंकि उनको एंग्जाइटी होती है किस चीज़ की, फ्यूचर की, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, इसका क्या होगा, अभी की तो कोई फिक्र है नहीं, खाना है, छत है, सब कुछ है, तो अब यहाँ का तो मसला हल हो गया, आप आगे की सोचो। अल्लाह ने क्या किया, अभी का मसला हल करने के लिए अर्रहमान दे दिया, हमेशा का मसला हल करने के लिए क्या दे दिया, क्या बात है, अर्रहमान अर्रहीम, उसकी तरतीब भी क्या अजीब तरतीब है, उसको आप इधर से उधर करो बात वो नहीं रहेगी, वो अपनी जगह उसका एक एक मकाम है। और फिर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीब तफसीर है इसका, इन दो अल्फाज की, कहते हैं अर्रहमान दुनिया के लिए और रहीम आखिरत के लिए, कहते हैं अर्रहमान दुनिया में हर एक के लिए اور الرحیم صرف اہل ایمان کے لیے آخرت میں. یہ بات بھی اب سمجھ میں آ گئی. کیوں؟ اور رحمان میں کیا تھا؟ ہمیشہ کے لیے کیا عارضی؟ دنیا بھی تو عارضی ہے نا. پر اس عارضی دنیا میں اللہ صرف کیا مسلمان کو رزق دیتا ہے؟ سب کو دیتا ہے. صرف کچھ لوگوں پر رحم کرتا ہے؟ سب پہ کرتا ہے. لیکن آخرت میں جو ہمیشہ کی رحمت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اہل ایمان کے لیے. اور آخرت کا لفظ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیشگی ہو. اور وہ کیا لفظ ہے؟ الرحیم. عجیب. اب نوٹس کریں گے قرآن میں جنت سے متعلق رحیم بھی آتا ہے, قیامت کے دن سے متعلق الرحمن بھی آتا ہے. کیوں؟ قیامت کا دن ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, لیکن قیامت کے دن ایک خاص شدت والی رحمت کی ضرورت ہے. نہیں, لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. الرحمن. تو جب اللہ تعالیٰ کی بہت شدید محبت ہوتی ہے نا, تو اس وقت آپ کو الرحمن کا لفظ ملے گا. بہت شدید رحمت. آپ کو تدبر کرنا پڑے گا کہ یا کون سی شدید محبت ہے. اسی لیے پھر آپ کو سورۃ الرحمن سمجھ میں آئے گی. الرحمن علم القرآن. جس نے اتنی شدید محبت کی, اتنا مکمل خیال کیا کہ اس نے اس مکمل خیال اور شدید محبت کے ناطے قرآن سکھایا. اس لیے قرآن سکھایا. ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ اور قرآن کس لیے سکھایا گیا تھا؟ کس محبت سے سکھایا گیا تھا؟ کیا لحاظ کر کے ہمارا سکھایا گیا تھا؟ ہم نے کیا بنا دیا قرآن کو؟ سبحان اللہ. تو یہ ہو گیا تھوڑی سی بات الرحمن الرحیم کے بعد.
1: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنا یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان.
0: دو لفظ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں, ایک رب اور ایک مالک, اور ان دونوں کے درمیان دو الفاظ ہیں.